कारण तुम जग आए सो अमृत गुरपाही जियो, छोड़ो वेस पेक चतुराई दुबदा इहो फल नाही जियो, मन रे थिर रहो मत कत न जाही जियो, बाहर टूंडत बहुत दुख पावे कर अमृत कट माही जियो, अवगण छोड़ गुणा को तावे कर अवगण पछताही जियो, सर अपसर की सार न जाने फिर कीच बुढ़ाही जियो, अंतर मैल लोभ बो झूठे बाहर ना वो काही जियो, निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो, पर हर लोक निंदा कूड़ त्यागो सच गुरबचनी फल पाही जियो, ज्यो पावे त्यो राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो। भाव हे भाई, जिस अमृत के खजाने की खातर तुसी जगत विच आए हो, उस अमृत वो जड़ा अमृत आ वो गुरु पासों सिर्फ मिलता है, पर धार्मिक भेख का पहरावा छड़ो, मन की चलाकी भी छड़ो, बाहरों शकल धर्मिया वाली ते अंदर दुनिया नू ठगण की चलाकी, इस दो रुखी चाल विच पिया ये अमृत फल नहीं मिलता। हे मेरे मन, अंदर भी प्रभु चरणा विच टिकिया रहो ते वेखी काम अमृत वेखी नाम अमृत दी पाल विच किते बाहर नहीं भटकदा फिरी, जे तो बाहर ढूंढन तुर पिया तां बहुत दुख पवेगा, अटल आत्मक जीवन देने वाला रस तेरे घर विच ही आ, हिरदे विच ही आ, रहाओ। हे भाई, औगण छड़ के गुण हासिल करन दा यतन करो, जो औगण ही करदे रहोगे तां पछताउणा ही पवेगा। हे मन, तू मुड़ मुड़ मोह ते चिक्कड़ विच डुब रहा, तू चंगे मंदे दी परख करनी बिल्कुल नहीं जानदा। हे भाई, जे अंदर मन विच लोभ दी मैल आ ते लोभ अधीन होके कई ठगी दे काम कर दियो ते बाहर तीर्थ आदि जाके इशनान करन दा की फायदा, अंदरली उच्ची अवस्था उदो ही बनेगी गुरु दे दसे रस्ते उते तुर के प्रभु दा पवित्र नाम जपोगे। ते हे मन, लोभ छड़ निंदिया ते झूठ त्याग गुरु दे बचना ते तुरिया ही सदा थिर रहन वाला अमृत फल मिल सकेगा। हे दास नानक, प्रभु दर ते अरदास कर ते आख, हे हरि जिवें तेरी रजा है तिवें मैनू रख, पर ए मेर करके गुरु दे शब्द विच जुड़ के मैं तेरी सदा ही सिफत सलाह करता रवां।